0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नोबल अमन इनाम के इंतखाब को शर्मनाक करार देते हुए कहा, इसने नार्वे पर नाकाबिले मिट दाग छोड़ दिया और दलाई दिए कि इजाज इसे मिलना चाहिए था। जुम्मे अफ्रीका की जज और इंसान हकों के अलमबरदार नावी पलाई ने जुम्मे के रोज चुंगी जंगी जराइम इंसानियत के खिलाफ अपनी खिदमात के सिलसिले में ये इनाम जीता, लेकिन ट्रंप ने नार्वे की नोबल कमेटी के इंतखाब को शर्मनाक शर्मिंदगी का बाइस फैसला करार दिया। उन्होंने अपने हामियों के जस्से में खिताब में कहा, उन्होंने पलाई के बारे में कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, मैंने इस खातून के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन फिर भी मुबारकबाद। अमरीका जिसकी नुमाइंदगी में मैं तौर सदर कर रहा हूँ, इसे अमन इनाम हासिल करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पलाय के बतौर इनाम याफ्ता मुंतखब होने से मनावे के मुल्क पर एक नाकाबिले मिट दाग बन गया है। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस वापस आने के बाद ट्रंप ने नोबल अमन इनाम जीतने की ख्वाहिश को खुफिया नहीं रखा। उन्होंने कई तनाजात का जिक्र किया जिनके हल में किरदार अदा किया और कहा कि उन्होंने शुमाली जनूबी कोरिया, जापान शुमाली कोरिया, चीन और ताइवान के दरमियान जंगों के फूट पड़ने को रोकने में मदद की। इस इनाम के साथ एक सुनहरी तमगा, एक सर्टिफिकेट और $1.2 मिलियन का इनाम रकम भी शामिल है। उनका नोबल अमन इनाम को हमेशा के लिए चंद इंतहा पसंद नजरिया साजों ने बदनाम कर दिया जो जमहूरियत के मुखालिफ हैं और दरहकीकत तहजीब के दुश्मन हैं। हम इसे नहीं भूलेंगे। प्लान ट्रंप के साथ अपना इनाम बांटने का मजाक उड़ाया था। ऐलान के बाद ताले बजाने वाले हाजरी से कहते हुए, अगर आप थोड़ी मजीद ताले बजाएं तो मैं ये इनाम ट्रंप के साथ बांट सकती हूँ। ट्रंप ने रूस के खिलाफ पाबंदियों में नरमी कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि रूस फौरी तौर पर अमरीकी आन मंडियों को 3 लाख टन से ज्यादा डीजल ईंधन फ्राहम करेगा। ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में ट्रंप ने कहा, रूस नवंबर में 5 लाख टन भेजेगा जिसके बाद जल्द ही मजीद 3 मिलियन टन की तरसील होगी। रूसी रिफाइनों की हालत के लिहाज से जल्दी इजाफी 3 मिलियन टन मुतवक है। ट्रंप ने कहा, यह खेप ईंधन की कीमतों को तेज से कम करने में मदद देगी जिससे अमरीकी किसानों, मवेशी पालने वालों और ट्रक ड्राइवर पर बुलंद कीमतों के असरात में गिरावट आएगी। तुर्किया के सरकारी गजट ने हफ्ते को सोशल मीडिया सार्फिंग की उम्रों की तोसी के बारे में एक नया जाब्ता शाया किया है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों को खिदमत फराहम करना प्लेटफॉर्म्स के लिए ममनू करार दिया गया है। इस जाब्ते को साइबर सिक्योरिटी इदारे ने तैयार किया है। उम्र की तोसी ई स्टेट पोर्टल के जरिए की जाएगी। सोशल मीडिया सर्विस फ्राहम करने को 15 साल से कम उम्र बच्चों को खिदमत फ्राहम करने की इजाजत नहीं होगी। जो सार्फिन 15 साल के हो चुके हैं उनके अकाउंट्स पर बच्चों के मफाद की जिस्मानी, जहनी, नफसियाती, समाजी और जज्बाती नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए मखसूस खिदमत की इजाजत होगी। जाब्ता ये भी तकाजा करता है प्लेटफॉर्म बच्चों के अकाउंट्स पर बतौर डिफॉल्ट सब प्राइवेसी सेटिंग्स नाफज करें, इन्हें निजी रखें, इन पर लाइव ब्रॉडकास्ट जाति नोयत की तशहीर को गैर फार कर दें। प्लेटफॉर्म को यह भी यकीनी बनाना होगा बच्चे सिर्फ इन अकाउंट से पैगाम वसूल कर सकें जिन्हें वे खुद फॉलो करते हैं। उन्हें वालदेन के लिए कंट्रोल टूल्स भी फ्राहम करने होंगे जो वालदेन को अपने बच्चों के अकाउंट सेटिंग्स को मुनज़्ज़म करने, इस्तेमाल के वक्त की हद मुकर्रर करने, अदायगी वाले लेन देन की मंजूरी देने की सहूलत दें। यह साप्ताह 1 नवंबर से नाफिज़ुल अमल होगा। मौजूदा अकाउंट्स की उम्र की तौसी 31 मार्च 2027 तक मुकम्मल की जानी चाहिए और जो अकाउंट्स 15 साल से कम उम्र सार्फिन का करार पाएंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और एंथ्रोपिक ने इंसानी मसनू जहनत के खिलाफ जालमान रवैये पर पाबंदी आयद कर दी। नई इस्तेमाल पॉलिसी के तहत आयद करता यह पाबंदी आम सार्फिन के मायूसियों, मॉडल के तजर्बाती मराहल या तारीखी तख्लीकी मौजूद का इहाता नहीं करती। कंपनी के आला अहदेदारों का मशीनी शोर के इम्कान को संजीदगी से लेना इस किस्म के अखलाक हिफाजती इकदाम के पीछे बुनियादी मुहर्रक है। तमाम कंपनी ने तर्जमान ने यह वाज़ेह नहीं किया कि किस किस्म के रवैये इस तशरीह के जुमरे में आते हैं। क्लाउड को पहले ऐसी सलाहियत से लेस किया गया जब सार्फ इसरार के साथ नुकसान पहुंचाना और बर्ताव करे तो गुफ्तगू खत्म कर सके। मसनू सेहत के निजाम में शोर होने के इम्कान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुतबियत पैदा करना जारी रखा हुआ है। एंथ्रोपिक के डायरेक्टर दारियो अमुदोई ने कहा है कि इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते जबकि खरीफ कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन मसनू जहां को इंसानी सुनियात से मंसूब करने के खिलाफ हैं। का कहना है कि यह हकीकी तहफ़ुज़ी मसला पैदा करता है। एआई डेवलपर एंथ्रोपिक